0: उसको पकड़ मेका ठिकाना नहीं कोई हाकिना मराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स Pui Hākena Marae is in Sydney. True or false? False. Pui Hākena Marae is in Whangaroa.
1: Upoku Pakaru Resources proudly sponsored by Waikato Tainui.
2: Hui hui a mai ki te waharoa. Te waharoa with hymns.